चाहते हो खुद के लिए सम्मान तो कुछ सम्मान दूसरों का भी करना सीख लो। अकड़े रहते हो हर जगह, अकड़े रहते हो हर जगह, कभी कभी कहीं झुकना भी सीख लो। पांच बजकर 37 मिनट हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

किशोर कुमार जी की आवाज में जिंदगी के सफर में। समस्याएं हैं तो कहीं समाधान भी होगा, समस्याएं हैं तो कहीं समाधान भी होगा, दुखों का पहाड़ है तो कहीं सुकून का आसमान भी होगा। ताउम्र कोई परेशान नहीं रहता यहाँ पर, ताउम्र कोई परेशान नहीं रहता यहाँ पर, सही समय आने पर हर समस्या का निदान भी होगा। 5:44 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी।

0: నిలయంలో సమయం సరిగ్గా 6 గంటలు కావస్తుంది. మరి కొద్దిసేపట్లో హిందీలో వార్తలు, తదనంతరం ఆంగ్లంలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే వింటారు.
1: ఆకాశవాణి సమాచార్ కే సాత్ మే విశాల్ శర్మ. विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी. इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा. हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की. राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी. प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया. श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया. जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं. भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है. वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी. ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा. श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की. बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है. इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी. उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा. नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा. राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे. जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं. तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा. हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे. श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं. 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी. उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी. ये फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है. रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है. इससे रेलवे का डिजिटल

0: संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के चार बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मैक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेप बाय शगुन चोपड़ा। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी एक्ट 2025 विल कम इनटू फोर्स अक्रॉस रूरल इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम टुडे। द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री सेड दैट द एक्ट विच गारंटीज 125 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर विल एम्पावर रूरल इंडिया। Our correspondent reports that a provision of 95,692 crore rupees has been made in the current financial year for operationalization of the new framework across the country. On the implementation, Union Minister of Rural Development Shivraj Singh Chauhan said no eligible rural worker should remain without work even for a single day. Mr. Chauhan said the government, in close coordination with the states and union territories, has completed all administrative, financial and technical preparations to ensure a seamless transition to the new framework. The minister said adequate financial resources have been made available, implementation systems are fully in place and ongoing works will continue without interruption. He added the enhanced guarantee of 125 days of wage employment will strengthen rural livelihoods, create durable community assets and accelerate the vision of Viksit Bharat. Prime Minister Narendra Modi had a telephone conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian yesterday. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia and the way forward. The Prime Minister welcomed the understanding reached and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region and for safeguarding freedom of navigation and commerce. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi is arriving in New Delhi this evening on a 3-day visit to India. This marks her first official visit to India. She will attend the 16th India-Japan Annual Summit tomorrow with Prime Minister Narendra Modi. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Our correspondent reports that India and Japan share a long-standing friendship rooted in centuries of cultural and civilizational exchange, spiritual affinity, and shared values of freedom, democracy, and respect for the rule of law. A major change in Uttarakhand's madrasa education system will come into effect from today. Under the new arrangement, the Uttarakhand Madrasa Education Board will be abolished and all minority educational institutions in the state will be governed under a new framework. From July 1st, the Uttarakhand Madrasa Education Board, the Uttarakhand Madrasa Education Board Act 2016 and the Uttarakhand Non-Government Arabic and Persian Madrasa Recognition Rules 2019 will cease to have effect. The state government has introduced a new system under the Uttarakhand Minority Educational Institutions Act. Under the new framework, the Uttarakhand State Minority Education Authority will be responsible for granting recognition to minority educational institutions, monitoring their functioning and ensuring academic quality. The new system will cover educational institutions of the Muslim, Sikh,

0: ईरानी चाय,
1: बन मस्का,
0: हैदराबादी बिरयानी,
1: टंग दी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई।
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्ने हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
1: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9।
0: इट्स नॉट जस्ट फूड,
1: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन।
0: जश्ने हैदराबाद।

नमस्ते, हेलो आदाब दोस्तों, गुड मॉर्निंग हैदराबाद एंड अ वेरी वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द वेस्टर्न म्यूजिक आवर ऑन 101.9 एफएम रेनबो. आई एम योर होस्ट आरजे पर्ल एंड आई एम सो सो सो हैप्पी टू हैव यू विथ मी दिस ब्यूटिफुल वेंसडे मॉर्निंग. अ ब्रांड न्यू डे इज़ हियर, फ्रेश प्लेलिस्ट इज़ रेडी एंड सो इज़ योर ब्लेस्ड चांस टू स्टार्ट टुडे with a big, big smile. So whether you're getting ready for work, making breakfast, or driving to work, driving through traffic, finishing your morning walk, or just simply enjoying a peaceful cup of coffee or tea, just thank God for making this beautiful day come to you this morning. And also thank you for being a part of All India Radio today. This is your space to relax, to recharge and enjoy some amazing Western music for one whole hour. This Western music hour keeps your spirits really high. It keeps your feet tapping and it sets your mood for the whole day. So turn the volume up because

गानों से तो आप समझ ही गए होंगे कि अब शुरू हो चुका है नमस्ते हेलो आदाब का हिंदी गानों का सेगमेंट, और एक खूबसूरत सुबह में आप सभी का दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद का 101.9 FM रेनबो। इस चैनल पर मैं हूं आपकी दोस्त आरजे पर्ल। उम्मीद करती हूं कि आज की सुबह आपके लिए ढेर सारी पॉजिटिविटी, मुस्कान और नई एनर्जी लेकर आई है। और दोस्तों, सुबह की शुरुआत अगर एक अच्छे ख्याल के साथ हो तो पूरा दिन थोड़ा और खूबसूरत लगने लगता है। इसीलिए आज एक छोटी सी बात याद रखिए।

है कि अपनी हेल्थ को कभी कल पर मत छोड़िए, क्योंकि सेहत ही वो दौलत है जो ज़िंदगी के हर सपने को पूरा करती है और हमें उन सपनों को पूरा करने की ताकत देती है। तो आज देश भर में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है दोस्तों। तो नमस्ते हेलो आदाब पर इसी के बारे में बातें ज़रूर होंगी। बने रहिए हमेशा की तरह हमारे साथ इसी चैनल पर। फिलहाल गानों का सिलसिला बनाए रखते हैं। अगला गाना क्यों हो गया ना मूवी से, ये रहा।

दोस्तों, लूडो मूवी से आपने सुना वो गाना आबाद बर्बाद। और दोस्तों, आज देश भर में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। ये दिन देश के महान डॉक्टर्स और भारत रत्न डॉक्टर बीदान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है। डॉक्टर बीसी रॉय एक बहुत ही प्रसिद्ध फिजिशियन और समाज सेवक थे। उनका जन्म और उनकी पुण्यतिथि दोनों ही 1 जुलाई को हुई थी, और इसी वजह से हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और डॉक्टर्स जो है ना, वो दोस्तों हमारी ज़िंदगी के असली हीरोज़ होते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो वो सिर्फ दवाई नहीं देते, हमें हिम्मत देते हैं, हमें तसल्ली देते हैं और उम्मीद भी देते हैं कि बस सब ठीक हो जाएगा। और त्योहार हो या छुट्टी, वो हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं ताकि हम और हमारे अपने सुरक्षित और बहुत स्वस्थ रह पाए। तो फैमिली डॉक्टर्स से तो जैसे घर वाला रिश्ता बन जाता है, जहाँ पीढ़ियों से हम उनको जानते हैं और उनको पूरी तरह ट्रस्ट करते हैं। और आज का दिन उन सभी डॉक्टर्स को थैंक यू कहने के लिए ये दिन है। अगर आपके जीवन में किसी डॉक्टर ने कभी मुश्किल वक्त में आपकी सहायता की हो, आपके परिवार की मदद की हो, और आज उन्हें एक प्यारा सा मैसेज भेजने

की इच्छा हो रही है तो रुकिएगा मत, जस्ट थैंक देम, शो देम योर ग्रैटिट्यूड. और कभी कभी एक दिल से निकला हुआ शुक्रिया किसी का दिन बना सकता है. और ये ना समझना कि वो डॉक्टर है, बहुत ऊंचे स्तर पर है, तो उनको अपने ग्रैटिट्यूड की, अपने थैंक यू की ज़रूरत नहीं है. सबको एक्नॉलेजमेंट लेना अच्छा लगता है और बहुत सुकून मिलता है उनसे, उनको, तो चाहे वो डॉक्टर हो या कोई और. यू नो, एक बात ज़रूरी है दोस्तों कि सिर्फ डॉक्टर्स ही हमारी सेहत की ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते, थोड़ी सी ज़िम्मेदारी हमारी भी होती है. रोज़ थोड़ा चलना, अच्छा खाना, पूरी नींद लेना और रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाना, ये भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि डॉक्टर. तो चलिए इस खूबसूरत सुबह में, सुबह को, यू नो, एक छोटा सा वादा करते हैं हम अपने आप से, अपनी हेल्थ के लिए, कि हम अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे, डॉक्टर्स का सम्मान करेंगे और हर दिन एक हेल्दी और हैप्पी दिन बनाने की कोशिश करेंगे. मैं हूँ आरजे पर्ल, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो पर, जहाँ वक्त है कुछ बेहतरीन गानों को, आपकी सुबह को और भी हसीन बना देगा ये गाने, गानों का सिलसिला. और कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ आपके फेवरेट शो पर. गानों के उस पार बात करेंगे नेशनल डॉक्टर्स डे के इस साल के थीम के बारे में.

0: FM Rainbow 101.9.
1: ईरानी चाय,
2: बन मस्का,
1: हैदराबादी बिरयानी,
2: टंग दी कबाब,
1: कुर्बानी का मीठा,
2: शहदूद मलाई.
1: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
2: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड.
1: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्न ए हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
2: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9.
1: इट्स नॉट जस्ट फूड,
2: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन.
1: जश्न ए हैदराबाद.

बैंड बाजा से आपने सुना वो गाना ए वही दोस्तों। नमस्ते हेलो आदाब पर हम बात कर रहे हैं नेशनल डॉक्टर्स डे के बारे में और इस साल की नेशनल डॉक्टर्स डे 2026 की थीम है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। ये थीम हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है कि हम अक्सर डॉक्टर्स को सिर्फ वाइट कोट और स्टेथोस्कोप में देखते हैं, लेकिन उस वाइट कोट के पीछे भी एक इंसान होता है, उनकी भी अपनी फीलिंग्स होती है, अपनी फैमिली होती है, अपनी थकान, अपनी परेशानियाँ और कभी कभी अपना दर्द भी होता है। तो डॉक्टर्स हर रोज़ मुश्किल फैसले लेते हैं, इमरजेंसी सिचुएशंस का सामना करते हैं, काफ़ी लंबी ड्यूटी भी करते हैं और कई बार बिना आराम किए सिर्फ इसीलिए काम करते हैं ताकि किसी और की ज़िंदगी बच सके। लेकिन जो लोग दूसरों की सेहत का ख्याल रखते हैं, क्या हम उनकी सेहत और उनकी मेंटल वेलबींग का भी उतना ख्याल रखते हैं या वो खुद रख पाते हैं या नहीं, इसी सवाल को सामने लाती है इस साल की थीम बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। ये हमें याद दिलाती है कि डॉक्टर्स को भी इमोशनल सपोर्ट, उनको रिस्पेक्ट, समझ और एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। और जब डॉक्टर्स खुश रहते हैं, मेंटली हेल्दी होंगे, तभी तो वो बेहतर तरीके से हम सब की देखभाल कर पाएंगे। तो आज सिर्फ उनका शुक्रिया ही नहीं बल्कि उनके प्रति अपनी सेंसिटिविटी भी दिखाएं और यू नो थैंक यू बोलिए, पूछिए कि वो भी ठीक है या नहीं। शायद किसी डॉक्टर के लिए वो भी किसी दवा से कम नहीं होगा। और आखिर में बस

इतना ही कहूंगी कि जो लोग हर दिन दूसरों की जिंदगी में उम्मीद की रोशनी लेकर आते हैं, उनकी जिंदगी भी उतनी ही रोशन और खुशहाल होनी चाहिए, है ना। इसी सोच के साथ इस साल का ये थीम रखा गया है। सभी डॉक्टर्स को नेशनल डॉक्टर्स डे की दिल से शुभकामनाएं एफएम रेनबो की तरफ से, और नमस्ते हेलो आदाब पर गानों की तरफ अपनी म्यूजिकल जर्नी फिर से कंटिन्यू करते हुए अगला गाना प्ले करती हूँ मैं आपके लिए, मूवी जीनियस से। गाने का नाम तेरा फितूर, सिंगर अरिजीत सिंह।

दोस्तों, कुछ ही देर में न्यूज़ का समय हो जाएगा, लेकिन उसके पहले कुछ ज़रूरी बर्थडे मेंशंस। नमस्ते, हेलो, आदाब। मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे पर्ल और आप सुन रहे हैं 101.9 FM रेनबो, एंड इट्स टाइम फॉर टुडेज़ बर्थडे मेंशंस। आज हम याद कर रहे हैं भारत के महान, बहुत ही महान बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी को, जिनकी आज जन्मतिथि है। और उनकी बांसुरी की मधुर धुन ने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक पहचान बनाई। और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी ने अपनी कला से क्लासिकल म्यूज़िक को हर उम्र के लोगों तक पहुंचाया। और उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए भी यादगार संगीत दिया और दुनिया भर में अपनी प्रस्तुतियों से लाखों संगीत प्रेमियों का दिल जीता। ही इज़ 87 ईयर्स ओल्ड टुडे, और उनके जन्मदिन पर हम उन्हें दिल से शुभकामनाएं देते हैं और उनके स्वास्थ्य और सुखी जीवन की कामना करते हैं। उनका संगीत आने वाली पीढ़ियों को भी इस तरह से प्रेरणा दे कि वो और बेहतर म्यूज़िक बना सके। और आज के इस खास दिन पर हम याद कर रहे हैं अपनी सुरीली आवाज़ से हर दिल को छू लेने वाले उस्ताद राशिद खान साहब को भी। ही टू वॉज बॉर्न ऑन द 1st of July। रामपुर साहसवन घराने से संबंध रखते हैं वो, और उस्ताद राशिद खान ने हिंदुस्तानी संगीत को अपनी गायकी से एक अलग ऊंचाई दी। उनकी आवाज़ में गहराई है, भाव है और रूहानियत भी, जो हर गाने को, हर महफिल को यादगार बना देती है। आज उनके जन्मदिन पर हम इस महान कलाकार को सम्मान के साथ याद करते हैं। उनकी संगीत को हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रखेंगे संगीत प्रेमी। और साथ ही साथ आज जन्मदिन है बॉलीवुड के बहुत ही टैलेंटेड सिंगर और मिमिक्री आर्टिस्ट सुदेश भोसले जी का भी। सुदेश भोसले जी अपनी ज़बरदस्त आवाज़ और खासकर अमिताभ बच्चन की आवाज़ की बेहतरीन मिमिक्री के लिए पूरे देश में मशहूर है, और उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में अपनी आवाज़ दी है। आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, दुआ करते हैं कि वो इसी तरह अपनी कला से हम सबका मनोरंजन करते रहे और हमेशा स्वस्थ और खुश रहे। सो दैट वॉज इट ऑन आवर बर्थडे मेंशंस। अगला गाना ये रहा बेफिक्रे मूवी से, नशे सी चढ़ गई।

0: इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जीरामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जीरामजी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो

0: 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखलाओं में वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। वॉशिंगटन डीसी में आयोजित 9वें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन में श्री क्वात्रा ने कहा कि ये परिवर्तन मजबूत आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों से प्रेरित है। श्री क्वात्रा ने इसका श्रेय भारत के घरेलू आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों को दिया। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल धीरज सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति और आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में तेजी का रुख रहा। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 428 अंक की बढ़त के साथ 76,906 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 137 अंक चढ़कर 24,003 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay.

नमस्ते, हेलो आदाब, और एक बार फिर से स्वागत है आपका सभी का, आप सभी का 101.9 FM रेनबो पर। मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे पर्ल। आज पहली जुलाई सिर्फ एक नए महीने की शुरुआत नहीं, बल्कि भारत भर में नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे भी मनाया जाता है आज। और हर साल पहली जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन साल 1949 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI की स्थापना हुई थी। और तब उस साल से लेकर आज तक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देश की इकोनॉमी को बहुत मजबूत बनाते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका भी निभा रहे हैं इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए। तो जब हम टैक्स प्लानिंग की बात करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, बिजनेस को सही दिशा देने की बात करते हैं, या फिर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, तब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मेहनत और एक्सपर्टीज हर जगह नज़र आती है। हर इंडिविजुअल, हर बिजनेस, हर जगह इनका महत्व है। और एक CA सिर्फ नंबर्स का एक्सपर्ट नहीं होता, वो बिजनेसेस का एक काफ़ी ट्रस्टेड एडवाइज़र माना जाता है। वो लोगों को बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद करता है और देश की इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करता है, उसमें काफ़ी योगदान देता है। तो आज के दिन हम सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को दिल से थैंक यू कहते हैं। आपकी मेहनत, ईमानदारी और प्रोफेशनलिज्म को सलाम। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी CAs को। और दोस्तों, आज पहली जुलाई एक खास वजह से भी याद रखी जाती है। आज भारत में GST डे भी मनाया जाता है। इस दिन साल 2017 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST पूरे देश में लागू किया गया था और इस नए टैक्स सिस्टम ने कई अलग-अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक साथ लाकर के उसको एक यूनिफाइड टैक्सेशन सिस्टम की शुरुआत की। और GST का उद्देश्य था टैक्स सिस्टम को और ज़्यादा सिंपल, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाने का। इसे देश से कई कई अलग राज्यों से व्यापार इम्प्रूव हुआ, राज्यों के बीच व्यापार करना आसान भी हुआ और बिजनेस को एक कॉमन टैक्स स्ट्रक्चर मिला। तो डिजिटल कंप्लायंस जो है वो भी, उसको भी बढ़ावा मिला। एंड आई थिंक दोस्तों, हर बड़े बदलाव के साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन GST ने भारत के टैक्स इकोसिस्टम को नए दौर की तरफ बढ़ाया। आई थिंक कि दिस वॉज अ रियली गुड मूव क्योंकि आज लाखों बिजनेसेस और प्रोफेशनल्स इस सिस्टम का हिस्सा है और देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान दे रहे हैं। तो इस GST डे पर हम उन सभी प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट्स, बिजनेस ओनर्स और टैक्स पेयर्स जैसे कि आप और मैं, सबको सलाम करते हैं जो ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो आप सुन रहे हैं 101.9 FM रेनबो, मैं आरजे पर्ल। चलिए अब बढ़ते हैं कुछ और बेहतरीन गानों की तरफ। होप यू आर एंजॉयिंग द प्लेलिस्ट ऑन दिस शो।

0: FM Rainbow 101.9 Musically Yours.
1: Musically Yours तो हम है ही, और दोपहर का वक्त, थोड़ी सी थकान होगी, काम का प्रेशर होगा, लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लेना. मैं आजे पर, आप सुन रहे हैं 101.9 FM Rainbow पर मुझे. चलिए इस दोपहर में थोड़ी सी मुस्कान और ढेर सारा प्यार, पॉजिटिव एनर्जी घोली जाए. आज बहुत सारे दिन मनाए हमने. आज इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे मनाया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे मनाया, जीएसटी डे मनाया, और आज इंटरनेशनल जोक डे भी है. दोस्तों, हर साल पहली जुलाई को ये दिन दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है. एक इस दिन का जो मकसद है वो बहुत ही सिंपल है कि हंसी बांटिए, मुस्कान फैलाइए और ज़िंदगी को थोड़ा हल्का फुल्का बनाइए. और जोक जो है ना दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि सबको हंसाने वाला होना चाहिए. सब उसमें साथ में हंसे, किसी के ऊपर हंसने वाला नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट्स वेरी ऑफेंसिव. और मान लीजिए अगर हम किसी के हंसने के पात्र हो गए तो कितना दर्द होगा, राइट? सो दैट इज़ द ट्रू इंटेंशन ऑफ जोक, जो खुद को भी हंसाए, अपने आसपास सभी को हंसाए. एक ऐसा जोक जो किसी के फीलिंग्स को हर्ट ना करे. और हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में कितना फंसे रहते हैं डेडलाइंस में, चाहे ट्रैफिक्स में, मीटिंग में, पढ़ाई में, और कई बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतने बिजी हो जाते हैं कि कभी कभी खुलकर हंसना भूल जाते हैं. लेकिन एक छोटी सी हंसी, छोटा सा प्यारा सा जोक, कोई फ़नी बात, या फिर किसी ने आपके साथ कोई ऐसी चीज़ शेयर की हो जिससे आपका पूरा मूड बदल सकता है हंसी के ठहाकों से, ये इसी को कहते हैं द पावर ऑफ लाफ्टर, द पावर ऑफ अ जोक. और कहते हैं लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, तो इस बात में काफ़ी सच्चाई है, क्योंकि हम हंसते हैं तो स्ट्रेस कम होता है, हम हंसते हैं तो हमारा दिल है वो भी हल्का महसूस होता है उसको, और दिन जो है थोड़ा आसान लगने लगता है हंसी से, ठहाकों से, मजाक से. तो आज इंटरनेशनल जोक डे पर एक छोटा सा चैलेंज मेरी तरफ से आप सभी के लिए, किसी दोस्त को हंसाइए, घर वालों के साथ फ़नी बात कीजिए, कुछ फ़नी किस्से याद कीजिए, ऑफिस में किसी का मूड अच्छा कर दीजिए, और अगर आप खुद किसी वजह से उदास है तो कोई कॉमेडी वीडियो देख लीजिए, या किसी अपने ऐसे दोस्त को फ़ोन कीजिए जो आपको हमेशा हंसा देता हो. याद रखिए दोस्तों, हंसी सिर्फ एक रिएक्शन है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये एक कनेक्शन भी है जो लोगों को करीब लाती है. हम हमारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को हंसी और हंसी के किस्सों से याद रखते हैं, और दिल हल्का उसी से हो जाता है, और ज़िंदगी को थोड़ा और खूबसूरत बनने का मौका मिलता है. मैं आरजी पर्ल, आप सुन रहे हैं 101.9 एफएम रेनबो, आकाशवाणी हैदराबाद पर. हंसी के साथ म्यूज़िक का भी डोज अपनी ज़िंदगी में लेते रहिए, सबको हंसाइए, किसी के ऊपर कोई जोक ना करे, किसी पर मत हंसिए, बस सबको हंसाइए, खुद भी हंसते रहिए. और ज़बरदस्त गानों के लिए तो आप तैयार हो ही, आपकी दोपहर और भी मस्त बनाने के लिए.

0: FM Rainbow 101.9 Musically Yours.
1: Musically Yours FM Rainbow 101.9 पर मेरे जाने का वक्त हो चुका है दोस्तों. अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और बने रहिए अगले शो जश्न-ए-हैदराबाद के लिए.

0: ईरानी चाय,
1: बन मस्का,
0: हैदराबादी बिरयानी,
1: टंगड़ी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई।
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्न ए हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
1: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9।
0: इट्स नॉट जस्ट फूड,
1: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन।
0: जश्न ए हैदराबाद।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 MHz पर। सामाइन, अभी आप सुन रहे थे मेरे रेडियो साथी चरण से हैदराबाद रिमझिम। इसी के साथ ही ये कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में रात के 9:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में उर्दू की बज्म सजेगी, यानी बज्म रंग। सामाइन, आइए समाप्त करते हैं बज्म नरंग।

नुहूश आसानी से मान नहीं पड़ेंगे। बतौर शायर जोश की उठान में बला का जोर था। उन्होंने अपना तखल्लुस जोश यूं ही इख्तियार ना किया होगा, गालिबन अपनी फितरत के हिजानंगेज अनासिर का उन्हें शुरू ही से इल्म रहा होगा। उनके यहाँ इब्तदाही से एक ज़बरदस्त खुवत नमो की तख्लीकी उपज फट पड़ने और बेख्तियार बहा ले जाने की कैफियत मिलती है। वो एक बगुले की तरह उठे और तूफान बनकर छा गए। देखते ही देखते उन्होंने अपनी तहलका खेजियों से ऐवान शेर के दरो दीवार को लर्जा दिया। वो सरतासर एक रोमानी शायर थे और शदीद बागी इंसान, ऐसा बागी जो बिलाखिर खुद अपनी ही आग की नज़र हो गया। मशाकी, पुरगोई, शौकत अल्फाज और कादिरुल कलामी उन पर ख़त्म थी। उनकी शायरी से लगता है कि वो किसी मौजू या मंजर को जैसा चाहते हैं चंद सानियों में वैसा ही नज़्म कर देते हैं। ज़बान के साथ उनका रवैया नहायत हाकिमाना और इंतहाई आमिराना था। यूं लगता था कि हज़ारों लाखों अल्फाज कतार बांधे खड़े हैं और अदना सा इशारा पाते ही सर झुकाए शेर में ढलते चले जा रहे हैं। अपने मुतालिक खुद जोश मलियाबादी फरमाते हैं, काम है मेरा तगैयुर, नाम है मेरा शबाब, काम है मेरा तगैयुर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाब ओ इनकलाब ओ इनकलाब। जोश बैक वक्त शायर इनकलाब और शायर शबाब थे। जोश की इनकलाबी या बागियाना शायरी के कुछ ख़ास पहलू हैं। पहला, अवामी और समाजी पहलू, जहां उन्होंने समाज की बुराइयां दिखाई हैं और अवाम की हालत बयान की है। दूसरा, वो नज़में जिनमें उन्होंने बगावत और आज़ादी के तराने छेड़े हैं। और तीसरा, ऐसी नज़में जिनमें समाज दुश्मनी का खुलकर इजहार हुआ है। जोश वो पहले शायर हैं जिन्होंने बग़ैर किसी खारिजी सहारे के इंसान की मरकज़ियत को तस्लीम किया और उसे इनकलाब की पहली और बुनियादी कड़ी के तौर पर पेश किया। वो उस नए इंसान की बशारत देते हैं जिसे अपनी क़ुव्वत पर भरोसा है और जो समाज से टक्कर लेने के अज़्म वलवले से सरशार है। इंसान का तराना, बागी इंसान, पस्त कौम, महाजन और मुफलिस ज़ईफ़ा, भूखा हिंदुस्तान, किसान, हमारी सोसाइटी और इसी तरह की दूसरी नज़मों में जोश ने बरे सगीर के अवामी दुख दर्द, इफ़लास, नादारी और जहालत को तरह तरह से बयान किया है और हम वतनों को बेदार करने के लिए उनकी इज़्ज़त को ललकारा। ऐसी नज़मों में सलाम, बगावत, नाखुदा कहाँ है, बेदार हो बेदार हो और निज़ामे नौ में आज़ादी और बगावत की आग भरी हुई है। उनसे आज भी उस पुराशोब अहद की वलवला खेजियों की याद ताज़ा हो जाती है। कहते हैं, उठ और ज़मीं पर नया लालाजार पैदा कर, उठ और ज़मीं पर नया लालाजार पैदा कर, ना आई हो जो कभी वो बहार पैदा कर, निज़ामे कोह नए नीली रवाख वहमो फरेब नया तसव्वुरे लैलो नहार पैदा कर, बहार में तो ज़मीं से बहार उबलती है, बहार में तो ज़मीं से बहार उबलती है, जो मर्द है तो ख़िज़ा में बहार पैदा कर। जोश ने अपने ज़माने के आम हालात और मसाइल पर भी रद्देअमल और नुक्ते नज़र वाज़े किया है। इस सिलसिले में सबसे अहम नुक्ता ग़ुलाम हिंदुस्तान की अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ जोश मलियाबादी का जज्बे बगावत है। उसी जज्बे की शिद्दत ने जोश को कौम परस्ती और इश्तराकियत की जानिब मायल किया और सियासी इस्तेहसाल के नतीजे में रूनुमा होने वाली माशी नाबराबरियों ने समाजी फलाह के नाम पर इश्तराकियत की राह समझाई। इन बातों के पस मंज़र में जोश का वो लादिनी का तसव्वुर भी कारफरमा रहा है जो मजहबी जवाल के आसार पर उनके बरहमी से उभरा था।
یہی وہ فکری عناصر تھے جن سے مرکب ہو کر جوش کی شاعری

0: लाभ वगैरह हैं। जोश के लहजे में जो मर्दानगी, बुलंद आहंगी और तनतना था, वो जज्बे बगावत और आज़ादी की तड़प के इजहार से ख़ास मुनासिबत रखता था। जोश की आवाज़ की ललकार और कड़क वलवलों को बढ़ाने और हिम्मत बुलंद करने के लिए आग का काम करती थी। नज़्म नारे शबाब में कहते हैं, काम है मेरा तगैयुर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाब ओ इनकलाब ओ इनकलाब। रंग सूरज का उड़ाता है मेरे सीने का दाग, रंग सूरज का उड़ाता है मेरे सीने का दाग, बादे सरसर का बदल देता है रुख मेरा चराग। तैर जाती है दिले फौलाद में मेरी नज़र, तैर जाती है दिले फौलाद में मेरी नज़र, खून मेरा खंदाजन रहता है मौजे बर्ख पर। एक दीने नौ की लिखूंगा किताब ज़रफ़िशां, एक दीने नौ की लिखूंगा किताब ज़रफ़िशां, सब्त होगा जिसकी जर्रीन जिल्द पर हिंदुस्तां। फिर उठूंगा अब्र की मानिंद बल खाता हुआ, फिर उठूंगा अब्र की मानिंद बल खाता हुआ, घूमता घिरता गरजता गूंजता गाता हुआ, वलवलों से बर्ख की मानिंद लहराया हुआ, मौत के साये में रहकर मौत पर छाया हुआ। जोश शायरी के लालाजार से गुनगुनाते हुए निकले, वतन की भट्टी में तप कर कुंदन हुए और फिर इश्तराकियत के लिए अपने तीशे फन से कोहकनी की। हर जगह खुश रहे, खुद को मनवाते रहे, कभी गाकर तो कभी चीख कर, कभी घनगरज के साथ सच्चाई के कड़वे बोल कहते रहे। फिर उनकी इनफिरादियत हक़ गोई के सांचे में ढलकर अपने लिए बलाए जान लेकिन समाज के लिए मुबारक साबित होती रही। उन्होंने अपनी जागीरदाराना इनफिरादियत को ज़बरदस्त अक्लो होश के ज़रिए कौसे खजा के रंगों की तरह समाज के पस मंज़र में तहलील कर दिया है। यही जोश की अजमत का राज है। जोश की इनकलाबी शायरी का समाजी पहलू बहुत अहम है। वो तबन इंसान दोस्त हैं और आला अखलाकी खदरों का शदीद एहसास रखते हैं। हुर्रियत, मसावात और उखुवत के उसूल उनको बेहद अजीज हैं। वो इंसानी समाज से जुल्म ज़्यादती, मफाद परस्ती और बदनवानी को दूर करना चाहते हैं और इस मकसद के हुसूल के लिए वो बागी भी बन जाते हैं और इनकलाबी भी। जोश की शायरी में इनकलाबी अंसर तकसीम हिंदुस्तान, फ़िरकावाराना फसादात और मफाद परस्ताना सियासतबाजी के मुजाहरे से पैदा हुआ है। जोश लिखते हैं, ख्वाब को जज्बे बेदार दिए देता हूँ, ख्वाब को जज्बे बेदार दिए देता हूँ, कौम के हाथ में तलवार दिए देता हूँ।
1: मस्त सहल हम जानों के तहत अभी आप जोश मलिहाबादी की शायरी में इनकलाबी पहलू उनवान पर मोहतरमा नरजिस गुलनार से अभी आप तकरीर समात फरमा रहे थे। सामईन बज़्म नरम को जय रखते हुए आइए सुनते हैं गीत और संगीत से भरपूर प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जाओ। सामईन, जैसा कि आप जानते हैं कि फिल्मी गीत महज तफरी का ज़रिया नहीं बल्कि अदब, मौसीकी और जज्बात का हसीन इम्तिजाज हैं। उर्दू ज़बान व अदब की मिठास, शेरी लताफत, तशबियात, इस्तियारात, अलामत और दिलकश उसलूब ने फिल्मी गीतों को ऐसी अदबी शान अता की है कि वो नसल दर नसल लोगों के दिलों में ज़िंदा रहते हैं। यही वजह है कि बहुत से फिल्मी गीत अपनी अदबी खूबियों के बास क्लासिकी शायरी के नमूने महसूस होते हैं। समय हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं फिल्म माचिस के इस पैकर तराशी पर मबनी गीत जिसमें यादों की कसक है।

0: फिलिप गुलामी से लिया गया दो गाना अभी आपने सुना। सामाइन, इस गीत में बड़ी ही पुरकाई, सादगी और तहधारी थी। ज़ियाल मस्की मफंग बरंजिश बहार हिजरा बिचारा दिल है, सुनाई देती ये किसकी धड़कन, ये तुम्हारा दिल या हमारे दिल है। यानी कि दो खालिब एक जान, यानी दिल किसका धड़क रहा है पता ही नहीं चलता है। दिल तो दोनों के पास है मगर धड़कन किसकी है सुनाई नहीं दे रही है। ये कमाल था हमारे शोरा हजरात का, ख़ास तौर पर हमारे गुलजार साहब ने इस गीत को अपने तखयल की परवाज़ से एक नई पहचान, एक नई उड़ान दी है। सामाइन, फिल्मी गीतों में अदबी जादू पैदा करने के वाले चंद अहम अनासिर कुछ इस तरह हैं। खूबसूरत तशबीहात, इस्तेदार, दिलकश अल्फाज, सादा मगर मौसर जबान में, जैसे सहरे मुमतना कहते हैं। खाफिया रदीफ और मुसीखियत, जज्बात की सच्चाई, फितरत निगारी वगैरह हैं।
1: लॉन्ग स्टैंडिंग एट्रल फिब्रिलेशन विद हाइपोटेंशन इन लॉन्ग स्टैंडिंग एट्रल फिब्रिलेशन बिकॉज देयर इज because

फिल्म जूली से लिया गया मोहब्बत भरा जज्बात की अक्कासी करने वाला गीत अभी आपने सुना। मोहब्बत के जज्बात की अक्कासी फिल्मी गीतों का सबसे बड़ा मौजू है। शायर मोहब्बत, जुदाई, इंतज़ार, उम्मीद, वफा, कुर्बानी जैसे एहसासात को नहायत ही खूबसूरती के साथ बयान करता है। यही वजह है कि सामे अपने जज्बात को इन गीतों में महसूस करता है, इनसे गहरा अटूट ताल्लुक़ कायम कर लेता है और इन गीतों को अमर बना देता है।

सफ़र फिल्म से लिया गया गीत अभी आपने सुना। सामिन, फिल्मी गीतों ने उर्दू ज़बान को घर घर पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया है। लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने खूबसूरत उर्दू अल्फाज, मुहावरे, तराकीब और शेरी अंदाजे को फिल्मी गीतों के ज़रिए सीखा है। इस तरह फिल्मी गीत उर्दू अदब की मकबूलियत का अहम और मौसर जरिया बने।

फिल्मी गीतों को पुरकारी, सहरकारी और हयात जाविदा देने में हमारे शोरा इकराम में ज़मीन आसमान के खलाबे मिला दिए। बहुत से मुमताज़ शोरा ने फिल्मी दुनिया में अपनी अदबी सलाहियतों का इजहार किया। इनके

लिखे हुए गीत नगमे आज भी ज़बान ज़द आम हैं। इन शुरा में खसूसन कई नाम मशहूर हैं। इनकी शायरी ने फिल्मी गीतों को अदबी अजमत अता की।

फिल्म घर से लिया गया दो गाना अभी आपने सुना। सामाइन, फिल्मी गीतों की मकबूलियत की वजूहात कुछ इस तरह हैं। आसान और दिलकश जबान, शायराना हुस्न, खूबसूरत धुनें, इंसानी जज्बात से भरपूर तर्जुमानी, याद रह जाने वाले दिलकश अशार, हर उम्र के अफराद के लिए कशिश एक लोच। मौजूदा दौर के फिल्मी गीत, आज के दौर में फिल्मी गीतों के अंदाज में नुमाया तब्दीली आई है। जदीद मौसीकी ने तेज़ रफ्तार धुनों और नए रुझानात ने गीतों की नौवियत बदल दी है। ताहम आज भी ऐसे शोरा मौजूद हैं जो अपने खूबसूरत कलाम के ज़रिए फिल्मी गीतों की अदबी रिवायत को बरकरार रखे हुए हैं।

समय गीत सुरीले गाते जाके तहत आइए सुनते हैं इस प्रोग्राम का आखिरी नगमा। फिल्म है एक दूजे के लिए।

गीत सुरीले गाते जाके तहत अभी आप फिल्म नगमे समात फरमा रहे थे। सामाइन आइए सुनते हैं कल बज़्म नरंग में पेश होने वाले प्रोग्राम्स का खुलासा। कल रात 9:30 पर हमारी बज़्म का आगाज़ होगा हरफ ताबिंदा से। तहरीर और पेशकश मोहम्मद अब्दुल हई की है। मुशायरे की महफिल सजेगी जिसमें हिस्सा लिया है ख्वाजा फरीदुद्दीन सादिक, तैयब पाशा खादरी, शाहिद अदीली, खाजी नूरुल हक फारूखी वगैरह ने। गीत सुरीले गाते जाके तहत सुरीले नगमे पेश करेंगे। पयाम शब जैदी का होगा। यह था कल पेश किए जाने वाले प्रोग्राम्स का खुलासा। बज़्म रंग के आखिर में आइए सुनते हैं पयाम शब। तहरीर व पेशकश जैदी की है।

हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। इंसान को हर वक्त अपनी तकलीफों को छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुसलसिल हंसते रहना और अपने गम दिल में दबाए रखना इंसान को अंदर से कमज़ोर कर सकता है। तन्हाई के लम्हात में अपने जज्बात का इजहार करना, दिल का बोझ हल्का करना भी ज़रूरी है। आंसू कमज़ोरी की अलामत नहीं बल्कि दिल को सुकून देने का एक ज़रिया हैं। मुतवाजिन ज़िंदगी वही है जिसमें खुशी के साथ अपने दुखों को भी कबूल किया जाए।

अभी आप बयां में शब्द समाप्त फरमा रहे थे। तहरीर व पेशकश जनाब जैदी की थी। सामाइन, इसी के साथ ही बज़्बिन रंग अपने अख्ताम को पहुंचती है। कल रात 9:30 पर बज़्बिन रंग में हमारी दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, आदाब।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 MHz पर। स्टूडियोज की घड़ी में रात के 11 बजने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी खबरें। आकाश

0: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉ मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतन भोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज AP मॉलर मर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और DR कांगो के बीच मुकाबला जारी है।

0: Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: Namaskar, Market Mantra ke taza ank mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hamesha ki tarah hum desh aur duniya ki chuni hui karobari, aarthik aur share bazaar se sambandhit taza khabron ko lekar haazir hain. Hamare sath charcha ke liye studio mein aamantrit hain आर्थिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक पुनीत जैन. पुनीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: धन्यवाद मनोज जी.
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस राइज ओवर हाफ ए परसेंट. सेंसेक्स गेन्स नियरली 450 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स अबव 24,000. जीएसटी कलेक्शन सर्ज ऑलमोस्ट 14% टू ओवर 1,94,000 करोड़ रुपीज इन जून दिस ईयर. एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज हुई खरीदारी. प्रमुख सूचकांक 0.5% से अधिक लाभ में रहे. सेंसेक्स लगभग 450 अंक उछला. निफ्टी 24,000 के स्तर से ऊपर उठकर हुआ बंद. देश में इस वर्ष जून में जीएसटी संग्रह लगभग 14% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत घटी.
0: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any फाइनेंशियल डिसीजन.
1: और अब शुरुआत करते हैं घरेलू शेयर बाजार से जहां आज खरीदारी तेज रही और पिछले दो सत्रों से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया. कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज साथ ही निफ्टी सभी प्रमुख सूचकांक लगभग 0.6% लाभ के साथ बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 444 अंक बढ़त के साथ 76,930 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 140 अंकों की बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ. विस्तारित बाजार की ओर चलें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मिड कैप इंडेक्स 100 में 0.3% से अधिक की वृद्धि हुई और स्मॉल कैप 100 इंडेक्स भी लगभग 0.4% लाभ के साथ बंद हुआ.
0: Benchmark domestic equity indices ended 0.6% higher today, snapping a two-session losing streak. Sensex rose by 444 points to close at 76,923. Nifty also gained 140 points to settle at 24,006. In the broader market on the NSE, the mid-cap 100 index added over 0.3% and the small-cap 100 index climbed around 0.4%. Earlier, markets opened marginally higher. Both the stock market indices extended their upward momentum throughout the session, supported by softer crude oil prices and buying across specific sectors.
1: सेंसेक्स पैक पर ध्यान दें तो 30 में से 21 कंपनियों के शेयर आज लाभ के साथ बंद हुए. सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाली कंपनियों में अव्वल रही कंपनी एटर्नल जिसके शेयरों में 5.7% की वृद्धि हुई. एशियन पेंट्स में 3.1% और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर 3% ऊपर उठकर बंद हुए. उधर बिकवाली के दबाव में एचसीएल टेक के शेयर लगभग 3.5% लुढ़क गए. उधर टेक महिंद्रा में लगभग 3.1% और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयरों में 2.5% से अधिक का नुकसान देखा गया.
0: इन द सेक्टोरल इंडस्ट्रीज ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 15 आउट ऑफ द 25 सेक्टर्स एंडेड इन पॉजिटिव जोन. अमंग द की गेनर्स रियल्टी क्लाइम 3.6%, एफएमसीजी रोज 1.8% एंड सर्विसेज एडेड ओवर 1.3%. इन कॉन्ट्रास्ट फोकस्ड आईटी

0: fell 2.5%, IT lost 1.9%, and metals dipped 0.9%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,276 companies advanced, 1,995 companies declined, and 176 companies remain unchanged.
1: नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपए आज 57 पैसे कमजोर हुआ, 95 रुपए 24 पैसे के स्तर पर बंद हुआ. उधर दुनिया की छह अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 101.37 पर चल रहा था. पुरित जी, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे. बाजार में आज थोड़ी सी तेजी देखी गई है, मूड थोड़ा सा बदल गया है, क्या टिप्पणी करना चाहेंगे बाजार पर?
2: मनोज जी, देखिए भारतीय शेयर बाजार एक बहुत ही मैं कहूंगा एक डिफिकल्ट पीरियड से गुजर रहा है. क्योंकि और ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो अभी तक इसकी बाजार की स्ट्रेंथ रहे हैं. जैसे आईटी क्षेत्र के जो शेयर्स थे वो अभी तक इस बाजार की हम कहेंगे कि एक नींव रहे थे, लेकिन वहां पर हम काफी गिरावट देख रहे हैं. काफी आज के दिन भी जबकि बाजारों में अच्छी तेजी थी, हमने आईटी के शेयर्स में काफी गिरावट देखी, और वहां पर काफी निवेश है रिटेल इन्वेस्टर्स का भी, इंस्टीट्यूशंस का भी, और आईटी क्षेत्र भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है. दूसरे तरफ देखें तो जो कंज्यूमर कंपनीज एफएमसीजी कंपनीज में हम पिछले काफी दिनों से गिरावट देखते आ रहे थे, और यूजुअली हम एफएमसीजी कंपनीज को इकोनॉमी का एक दर्पण मानते हैं. हम मानते हैं कि अगर एफएमसीजी कंजम्पशन कम है तो उसका असर, नेगेटिव असर, सिर्फ शेयर बाजार पर ही नहीं पूरी अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ता है. वहां पर हमने आज तेजी देखी जो एक पॉजिटिव साइन है, यानी वो पॉइंट कर रहा है कि आने वाले समय में शायद कंजम्पशन यहां बेहतर हो. जो हम नेगेटिव इफेक्ट देख रहे थे मिडल ईस्ट वॉर के, शायद वो इफेक्ट अब कम होंगे. कुछ हमने कमी देखी है, कुछ एसेंशियल कमोडिटीज में कमी आई है, वहां पर थोड़ी गिरावट आई है, तो कंजम्पशन बढ़ सकती है. तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं आपके बाजार जो है एक मिले जुले दौर से गुजर रहा है. ओवरऑल डायरेक्शन पॉजिटिव है. मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स जो आ रहे हैं वो उम्मीद से थोड़े बेहतर हैं. हमने देखा जो इवन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा भी आया, कोर सेक्टर ग्रोथ का डेटा आया, वो उम्मीद से बेहतर था. क्योंकि पिछले महीना अगर आप देखें जून का, काफी मुश्किल महीना था क्योंकि वॉर का इम्पैक्ट बहुत था, सप्लाई चेन्स काफी डिसरप्टेड थी. तो कुल मिलाकर एक मिला जुला रुख है, पर मुझे लगता है कि आने वाले समय एक पॉइंटर है कि आने वाले समय में जैसे थोड़ी और इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होंगी तो बाजार और बेहतर हो सकता है.
0: पुनीत, एफएमसीजी इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इट रोज 1.8% टुडे. अ लॉट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर बेस्ड ऑन सीजनल डिमांड. वी आर द हाइट ऑफ द समर सीजन. देयर इज ऑल्सो प्रोजेक्शन ऑफ ड्राउट बिकॉज 43% less rainfall has been predicted by IMD. How do you see all of that playing into, you know, your food and beverage consumption and really the pricing of FMCG stocks, because they seem to adjust quite well?
2: So Arjun, interestingly, FMCG sector, like I said, is a very important sector of the economy, because it not only concerns large companies, it concerns consumption by people at large, and it gives us some kind of an idea what is the trend in the economy. Now FMCG sector is going through some kind of a turmoil, because what we saw was some pullback in consumption lately. At the same time, we saw prices going up because the input prices, the raw material prices, which are commodities, they really shot up in the last 2-3 months. Fortunately, today we saw that there was a pullback in most commodity prices. You would see that even commodity stocks, a lot of them pulled back today. So probably the market is reading that going forward, prices in commodities and therefore the input prices for FMCG companies will come down and the profitability will rise. Yes, there are concerns about consumption because of lack of rainfalls and the expectations of a shortfall in monsoon rains this year. That is there. I don't think we can wish that away. That is, we're going to deal with it. Government is trying to bring in measures which will improve the situation. But I think that challenge being there, we will see margins improve because of fall in prices for inputs.
1: Puneet ji, aapne charcha ki IT sector ki aur kaha ki wahan par sthiti उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी. यहां पर क्या समझा जाए कि हमारी आईटी सेक्टर जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में परिवर्तन चल रहा है वहां खरा उतरने में पीछे रह रही है, या ढांचागत समस्या आ रही है हमारी आईटी सेक्टर में सेवाओं को लेकर, या कहने जो नए प्रोडक्ट उनके हैं उनको लेकर?
2: मनोज जी देखिए, सच बात तो यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कुछ हद तक ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि जो

0: अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगमन हो रहा है, उससे जो काम करने का तरीका बदल रहा है फॉर पर्टिकुलरली फॉर सॉफ्टवेयर कंपनीज, वो एक बहुत बड़ा बदलाव है इस सेक्टर के लिए। आज ही एक बहुत प्रमुख आईटी सर्विसेज कंपनी ने अपनी जो गाइडेंस दी थी टॉप लाइन ग्रोथ की, उसको काफी मेजरली कट किया, उसका नेगेटिव असर सारी इंडस्ट्री पर आया। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जो आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनियां हैं उनके शेयर्स अपने पिछले 10 साल के सबसे नीचे स्तर पर चल रहे हैं, जबकि अच्छी कंपनीज हैं, काफी प्रॉफिट्स हैं वहां पर और बहुत बड़े पैमाने पर वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं। तो डेफिनेटली इंडियन आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर सर्विसेज सेक्टर बहुत बड़े चैलेंजेस से गुजर रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले 2 या 3 वर्ष ये काफी डिफिकल्ट रहेंगे इस सेक्टर के लिए। उसके बाद जो नए आयाम होंगे, नए डायमेंशन होंगे, किस प्रकार से ये देखिए डिजिटल दुनिया तो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है, तो इंडियन कंपनीज भी अडेप्ट करेंगी, पर शायद अभी मार्केट्स को मैं कहूंगा डाउट है कि कौन सी कंपनी सर्वाइव करेंगी, कौन सी कंपनीज ग्रो करेंगी, ये भी क्लियर नहीं है। तो इस पूरे माहौल में अनसर्टेनिटी का माहौल है, उसमें जो आईटी क्षेत्र के जो शेयर्स हैं उसमें हम कुछ गिरावट देख रहे हैं।
1: पुनीत, अ लॉट ऑफ आवर आईटी कंपनीज डिपेंड अपॉन आउटसोर्सिंग, ऑफशोर आउटसोर्सिंग फ्रॉम यूएस कंपनीज हु आर नाउ डिपेंडेंट अपॉन artificial intelligence income from that particular service and capital expenditure on artificial intelligence data centers being created as a result of it. And we've seen from the earnings results of bellwether IT companies in India that a lot of their AI income has gone up. So how do you see IT companies adjusting to this? Because it's not necessarily it's high skill, but it's a lot of jobless growth as well. Is that really what is hitting the IT sector now?
0: So jobs vis-a-vis the growth of AI in workplaces, of course, is a major concern. We still do not know, but it's as it unravels, there are definitely huge concerns about employability of people, particularly countries like India, where we have large white-collar workers. There could be a significant impact on employment. This is just the beginning. We don't know what is going to happen. I think it will take a couple of years to play out. But IT companies, of course, are at the receiving end of this entire turmoil.
1: Your short opinion on metals, because it's been known to be volatile in the past as well. So we saw it slip by 0.9% today. Now we can see producers, in fact, looking for a substitute for copper, aluminium being one of them, because a lot of EV production is using copper. They want to substitute it for aluminium. Do you see these kind of policy changes actually impacting metal stocks now?
0: Definitely. I think, in fact, in the last 2-3 months, commodity prices, particularly metal prices, have really shot up, even steel prices and other non-ferrous metals. So I think the industry is trying to bring down those prices because inflation is really hurting them. But my guess is this will take a couple of years. It's not going to happen overnight. I think this is a slow process. It will take some time.
2: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं वैश्विक शेयर बाजार की ओर। सबसे पहले एशियाई बाजार, जहां प्रमुख बाजारों में मिला जुला रुख देखने को मिला है। खरीदारी के समर्थन से ताइवान के ताइएक्स सूचकांक में 1.9% से अधिक की वृद्धि हुई। वहीं जापान का निक्की 225.6% लाभ के साथ बंद हुआ। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.4% से अधिक की बढ़त हुई। इसके विपरीत बिकवाली के दबाव में दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 2% की भारी गिरावट हुई। उधर सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 0.2% नीचे आ गया। अवकाश के कारण हांगकांग के शेयर बाजार में कामकाज बंद रहा। यूरोपीय जोन की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां मिला जुला रुख प्रमुख बाजारों में दिख रहा था। एक ओर बिकवाली के चलते फ्रांस का कैक 40 0.8% और लंदन का फुटसी 100 0.5% नुकसान के साथ कारोबार कर रहे थे, जबकि जर्मनी के डेक्स में 0.1% से अधिक की बढ़त देखने को मिल रही थी। अन्य आर्थिक खबरों पर ध्यान दें तो यूरोजोन में जून महीने में इस वर्ष वार्षिक आधार पर 2.8% कमी मुद्रा स्फीति में देखने को मिली है, जबकि मई में मुद्रा स्फीति की दर 3.2% दर्ज हुई थी। यूरोपीय संघ के सांख्यिकी कार्यालय यूरोस्टेट की ओर से जारी ताजा आकलन में वार्षिक आधार पर जून में ऊर्जा पदार्थों के मूल्यों में 8.7% की वृद्धि रहने की सूचना दी गई है, जबकि मई में इन पदार्थों के मूल्यों में 10.8% की वृद्धि हुई थी।
1: टू व्हाट एक्सटेंट डू यू सी द लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया इंपैक्टिंग यूरोपियन एनर्जी प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन एज़ वेल, व्हिच हैज़ कम डाउन।

0: वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों में यह कहा गया कि जून में घरेलू जीएसटी संग्रह 1,34,774 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.5% अधिक है। इस दौरान ध्यान देने वाली बात यह है कि आयात पर जीएसटी संग्रह 34.6% बढ़ा, 60,038 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कुल मिलाकर जीएसटी की दिशा और देश की आर्थिक दशा किस रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं समझना चाहेंगे, और ये आंकड़े क्या कह रहे हैं?
1: देखिए, यहां भी मैं कहूंगा कि चौंकाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि ऐसा लगता था कि जून का महीना काफी डिफिकल्ट महीना है, महंगाई की दर बढ़ रही थी, कंजम्पशन कम होने की आशंका थी, बारिश नहीं हो रही थी, ये सब चिंताओं के बीच में हमको जब जीएसटी जो फर्स्ट इंडिकेशन आता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो अच्छा आता है, वो ऐसा दर्शाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ काफी स्ट्रांग रही होगी। तो ये काफी एक अनएक्सपेक्टेड नंबर है। हालांकि इसमें काफी बड़ा योगदान इंपोर्ट के नंबर्स का है, अगर आप देखें जो हमने, यानी ज्यादा आयात हम कर रहे हैं, इंपोर्ट्स कर रहे हैं, इंस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट कि हमारी मुद्रा पे जो रुपी पे है उस पे प्रेशर हो रहा है, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था ओवरऑल बहुत अच्छा कर रही है। कुछ हद तक हम इसका क्रेडिट गवर्नमेंट को दे सकते हैं कि वो इस दौरान भी उन्होंने जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको स्टेबल रखा है, स्ट्रांग रखा है, और कंजम्पशन जो है, क्योंकि जीएसटी नंबर सीधे कंजम्पशन से रिलेटेड है, तो मुझे लगता है कि कंजम्पशन भारत में अभी भी अच्छी चल रही है। ये एक सरप्राइजिंग ट्रेंड है, बट दैट इज ट्रू।
2: द नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स वर कैरिड आउट इन 2025, वी सॉ अ स्पाइक इन ऑटो सेल्स, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट इन 2026?
1: So I think those reforms are playing out still. So we've seen a rebound in auto sales, like you mentioned, which was light goods. Now we are seeing some stability in FMCG and consumption items. So my guess is that simplification of GST should really help not only consumers, it should help producers also. The companies which pay GST to government, they're also looking for ease of doing business. My guess is that government will try and simplify this further. In fact, the policy making decision, they will kind of roll out over the next 6 months. We probably will see a better year in 2027.
2: In more good news, the Unified Payments Interface UPI transaction volumes rose 23% to over 22 billion in June on a year-on-year basis, while UPI transaction value surged 20% to over 28 lakh crore last month, according to data released today by the National Payments Corporation of India. On an average basis, UPI processed around 757 million transactions daily in June. So it seems the June news has really, I'm sure it'll give economists something to think about. But when we talk about electronic transactions, payments being made in this way, what is the role of cash going to be in the future?
1: So while we, of course, ideally cash transactions should have gone down, surprisingly, we haven't seen a much decline in cash transactions. In fact, cash in circulation in India has gone up lately. But probably that is a sign of the economy expanding to pockets of rural India and other places. Overall, UPI definitely has helped us. But I think cash still continues to be the king.
2: So Digital India program depends a great deal on the internet.
1: Absolutely. And I think we've done very well in that area.
0: अच्छी खबरों का सिलसिला हम जारी रखेंगे और आगे बढ़ते हैं ग्रामीण भारत की ओर। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से लागू हो रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का माध्यम है।
2: The central government has notified revised wage rates under the Viksit Bharat Ji Ram Ji Act of 2025 effective from today. According to the notification issued by the Rural Development Ministry, wage rates have been enhanced across all states and union territories. It said for the first time an interim base wage rate of 300 rupees per day has been introduced, ensuring that no notified wage under the program falls below this level. More from our correspondent.
3: The national average wage has risen from 298.8 rupees per day under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act to 327.4 rupees per day under VBG Ramji, marking an average increase of over 10%. 21 states and administrative units, which previously had wages below 300 rupees, have now been brought up to the new benchmark. The states of Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal, Assam, Arunachal Pradesh and Himachal Pradesh are among those witnessing significant hikes ranging between 15 and 25%. The Ministry highlighted that Arunachal

0: Pradesh and Nagaland have received the highest percentage increase of nearly 24.5%. States with already higher wages have also seen upward revisions. Union Minister for Rural Development Shivraj Singh Chauhan described the revision as a historic step towards building a Viksit Bharat through prosperous villages. With Saklain Akhtar, this is Vishnu P.S. for Akashwani News, Delhi.
1: Indian Ambassador to the United States, Vinay Mohan Quatra, has said India is emerging as a global leader of trusted supply chains. Addressing the 9th U.S.-India Strategic Partnership Forum's annual leadership summit in Washington, D.C., Mr. Quatra said this transformation is underscored by resilient economic growth and structural reforms. The Indian Ambassador attributed this transformation to India's domestic economic growth and structural reforms supported by robust and mutually beneficial partnerships abroad. The ambassador also outlined New Delhi's ambitious macroeconomic roadmap, projecting a structured path for India to grow into a $25 to $30 trillion economy by 2047.
2: In India, under the leadership of Prime Minister Modi since 2014, has been a series of economically transformative measures on the ground, which have resulted in a consistently high growth of 7%+, which is uniquely driven by domestic demand. It has externalities, but not really that strong.
1: Oil marketing companies have reduced the price of a 19-kilogram commercial LPG cylinder by 183.5 rupees today. According to the Indian Oil Corporation Limited, the new prices for commercial LPG cylinders have come into effect from today. After the reduction, new rate for 19-kilogram commercial LPG cylinder price in Delhi has been slashed to 2,930 rupees. This decision will provide relief to restaurants, dhabas, hotels and those involved in the food and beverage business. Let's now move on to the energy market, crude oil. Global crude oil prices declined today. Brent crude was trading 0.9% down at $72.30 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 0.7% down at $69.03 per barrel when reports last came in. Very briefly, despite the traffic that we're seeing through the Strait of Hormuz, there is also news trickling in of fresh attacks. Is any of this true?
3: So there may be some random attacks happening in Hormuz, but I guess the supply of oil from the Gulf has started in right earnest. In fact, I read the news that Saudi Aramco has already started selling oil on a spot basis, and about 6 million barrels thereby selling. So my guess is that supply chains have been restored rather quickly in the Gulf.
1: Let's move on to the bullion market now. In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 0.5% up at 1,43,610 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.1% down at 2,28,550 rupees per kilogram a short while ago.
4: आइए आपको लिए चले MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में समाचार तैयार की जाने तक अगस्त अनुबंध वाले सोने का मूल्य 0.5% बढ़कर 1,43,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध वाली चांदी थोड़ी सी कमजोर होकर 2,28,421 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी। यहां पर पुनीत जी, सोने और चांदी के भाव अब यहां से कहां जाते दिख रहे हैं, क्योंकि एक और कई देशों में जो केंद्रीय बैंक है उनकी ओर से खरीदारी भी चल रही है, सोने के भाव नीचे भी आ रहे हैं, तो आगे का रुख क्या लग रहा है?
3: मनोज जी, देखिए अभी फिलहाल जो प्रेशियस मेटल्स हैं इनका डायरेक्ट इंपैक्ट डॉलर इंडेक्स से आ रहा है, और जैसे आप देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है लगातार 101 पहुंच गया है, तो हमने सोने और चांदी में कमी देखी है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी आने वाले कुछ समय तक थोड़ा कमजोरी रहेगी प्रेशियस मेटल्स में, और शायद फिर कंसोलिडेशन होकर अगले 2 या 3 महीनों बाद शायद हम थोड़ी स्टेबिलिटी देखें। मुझे, मेरा पर्सनल व्यू है कि यहां से थोड़ी कमजोरी अभी और हम देख सकते हैं इन प्रेशियस मेटल्स।
1: एंड व्हाट्स द लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस, इज दैट प्लेइंग अ रोल इन द स्टेबिलिटी इन प्राइसेस?
3: डेफिनेटली, दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई कमोडिटी प्राइसेस अक्रॉस द वर्ल्ड, इफ यू सी, दे हैव फॉलन, एंड देयरफॉर गोल्ड एंड सिल्वर आल्सो अंडर प्रेशर।
4: बस यहीं पर पुनीत जी, श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
3: धन्यवाद मनोज जी।
5: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

गाना अगर गाना है तो पहले उसे सुनना भी पड़ेगा, और इसीलिए एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन सकते हैं आपके दिल के हर एक भाव से मेल खाते गीत, यहाँ इस कार्यक्रम में जिसका नाम है गीत मेरे मन मीत। मैं अभिनीत आपका पुनः स्वागत करता हूँ। पहला गाना था फिल्म संगम से लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और मुकेश की आवाज में। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीत शंकर जयकिशन का, जिन्होंने हमारे अगले गीत को भी सुरों से सजाया है, जो कि है फिल्म गबन से रफी साहब का गाया हुआ, शब्द रचना हसरत जयपुरी की।

लता मंगेशकर का गाया ये बेहद खूबसूरत गीत था फिल्म वो कौन थी से, जिसे लिखा राजा मेहंदी अली खान ने और संगीत मदन मोहन का। वैसे हमारी मुलाकात तो अगले हफ्ते मंगलवार को हो ही जाएगी और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एफएम गोल्ड चैनल में हमेशा ही आपका हमारे किसी ना किसी साथी से मिलना हो ही जाएगा। फिलहाल गीत मेरे मनमीत को अभी हमें यहीं पे रोकना पड़ेगा क्योंकि आज का सफर यहीं समाप्त होता है। अवनीत शुक्ला को दीजिए आज्ञा, आगे आप सुनेंगे समाचार। नमस्कार।

0: सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम कल से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही काफी है। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। यह शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ आज होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और जापान मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए साथ काम करते रहेंगे। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। कार्यालय के अनुसार करीब 10 लाख गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। 13,000 से अधिक यूथ बूथ स्तर अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को प्रपत्र वितरित करेंगे। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने इंग्लैंड को 190 रन का लक्ष्य दिया है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट मुकाबले में इंग्लैंड ने डीआर कांगो को 2-1 से हराकर राउंड अप 16 में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज़ रेड बाय साइरा मुज्तबा।

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं अंजू आपके साथ और लेकर आई हूं कार्यक्रम निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और शुरुआत कर रही हूं एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, लेकिन हमेशा की तरह कुछ अल्फाज लिए। ना आसमां की तमन्ना न तारों की चाहत, ना आसमां की तमन्ना न तारों की चाहत, बस इस वादी में मिले उम्र भर मुझे तेरी सोहबत।

नींद से क्या शिकवा जो आती नहीं रात भर, नींद से क्या शिकवा जो आती नहीं रात भर। खता तो उस चेहरे की है जो हमें सोने नहीं देता।

एक तुम हो एक मैं हूँ, एक तुम हो एक मैं हूँ और मोहब्बत हो दरमियाँ। इस जहाँ में फिर किसी और की भला गुंजाइश हो कहाँ।

अब नजरों को नजारों की तमन्ना ही कहाँ है, अब नजरों को नजारों की तमन्ना ही कहाँ है, जब सामने तुम हो तो फिर देखना ही क्या है।

तुमने तोड़े हैं मेरे दिल के टुकड़े इस तरह, तुमने तोड़े हैं मेरे दिल के टुकड़े इस तरह, देख लो कि अब हर टुकड़ा मुस्कुरा कर तुम्हारा ही नाम लेता है।

रेशमी जुल्फों का पहरा था उन नशीली आंखों पर, हम होश में रहते भी कैसे जब दिल ही हार बैठे हम उस मंजर पर।

0: रोज नया बहाना बनाकर तुम जो हमसे मिलने आते हो, रोज नया बहाना बनाकर तुम जो हमसे मिलने आते हो, मोहब्बत नहीं है तो फिर ये दिल लगी किस लिए जताते हो।
1: यूं ही तुम मुझसे

मेरी हर सुबह और हर शाम तुम्हारे ही दम से है। मेरी हर सुबह हर शाम तुम्हारे ही दम से है। तुम हो तो ये कायनात है, वरना तुम्हारे सिवा इस दुनिया में क्या रखा है।

दोस्तों, ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार 1:10 पर। गीत सुहाने लेकर एक बार फिर से रहेंगे आपके साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक

0: तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विदेश सचिव का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। यह शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ आज होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और जापान मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए साथ काम करते रहेंगे। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम कल से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी मामले में हरियाणा के एक आरोपी को गुजरात के राजकोट से गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने बताया कि आरोपी ने खुद को सुरक्षा एजेंसी का अधिकारी बताकर एक वरिष्ठ नागरिक को डिजिटल गिरफ्तारी का डर दिखाया और उनसे 25 लाख रुपए से अधिक की ठगी की। सीबीआई ने लोगों से अपील की है कि वे डिजिटल अरेस्ट, फर्जी निवेश योजनाओं और सरकारी एजेंसियों के नाम पर आने वाली धोखाधड़ी वाली कॉल्स से सतर्क रहें। श्री अमरनाथ जी की तीर्थ यात्रा आज से शुरू होगी। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालताल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। भारत ने पाकिस्तान के फारूकाबाद में स्थित 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत और इंग्लैंड का पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 190 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन बाद में तेज बारिश होने के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर पाया, जिसके बाद मैच रद्द करने का फैसला लिया गया। दोनों टीमों को 1-1 अंक मिले। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. The government has approved 2 major highway infrastructure projects worth a combined over 14,000 crore rupees. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decision yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the Cabinet has approved the construction of an 8.1-kilometre-long, 6-lane road tunnel in Delhi on NH-148AE connecting the Dwarka Expressway with Nelson Mandela Marg in Vasant Kunj. Mr. Vaishnaw said that the Cabinet also approved the construction of the 117.7-kilometre-long Kanpur-Kabrai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh as a 4-lane access-controlled corridor.

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू और कार्यक्रम है गीत सुहाने। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। नदी का किनारा हो और तुम सामने बैठे देखो नजारे, उस बहते पानी में भी सिर्फ अक्स दिखेंगे तुम्हारे।

लोग पूछते हैं हमसे हमारी दीवानगी का सबब, लोग पूछते हैं हमसे हमारी दीवानगी का सबब, अब कैसे कहें कि तेरी चाहत में खुद को ही भुला बैठे हैं हम।

नींद से कह दिया है कि अब वो हमारे पास ना आए, नींद से कह दिया है कि अब वो हमारे पास ना आए। हम हर रात जागते हैं शायद कि तुम अब आ जाओ।

हमारे जो साथी अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें हम बताते हैं आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम है गीत सुहाने, मैं हूँ आपके साथ अंजू।

दुनिया की हर मुश्किल से तुम्हें छुपा कर रखेंगे। एक बार भरोसा तो करो और आ जाओ हमारी मोहब्बत की पनाह में।

दिल का आशियाना सूना पड़ा है तेरे जाने के बाद, दिल का आशियाना सूना पड़ा है तेरे जाने के बाद, फिर से इस वीरानी को गुलजार करने, ऐ मेरे प्यार तू एक बार आ जा।

इस कदर गहरे उतरे हो तुम मेरी रूह में, इस कदर गहरे उतरे हो तुम मेरी रूह में कि अब हर धड़कन में तेरे ही प्यार की लौ सुलगती है।

तुम पास नहीं हो तो ये धड़कनें रूठी सी लगती हैं, तुम पास नहीं हो तो ये धड़कनें रूठी सी लगती हैं, आ जाओ पास मेरे, ये दिल बहुत बेकरार रहता है।

तेरी सादगी का ये अंदाज़ हमें बहुत भाता है, तेरी सादगी का ये अंदाज़ हमें बहुत भाता है कि जो बिना कुछ कहे भी दिल की हर बात समझ जाता है।

दिल की धड़कनों ने ये गवाही दी है मुझे अक्सर, दिल की धड़कनों ने ये गवाही दी है मुझे अक्सर कि सदियों तक याद रखी जाएगी ऐसी हमारी मोहब्बत की कहानी बनेगी।

दोस्तों, ये सफ़र अब यहीं पर ख़त्म होगा क्योंकि अभी होंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार, और 2:10 पर रात सुरमई लेकर एक बार फिर से आपके साथ रहेंगे। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ 16वीं भारत जापान वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। बैठक में दोनों देश द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। जापान की प्रधानमंत्री 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा भारत और जापान की विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ आज होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और जापान मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए साथ काम करते रहेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश

0: 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम कल से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने हेलीकॉप्टर परिचालन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश के पहले निजी पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रोसीजर को आंध्र प्रदेश के उंडावली हेलीपोर्ट के लिए मंजूरी दे दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि ये उपग्रह आधारित आधुनिक तकनीक खराब मौसम और दूर दराज क्षेत्रों में भी हेलीकॉप्टरों की सुरक्षित और सटीक लैंडिंग सुनिश्चित करेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि ये पहल हेलीकॉप्टर सेवाओं को अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और हर मौसम में सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली से आपदा राहत, एयर एम्बुलेंस, पर्यटन और क्षेत्रीय संपर्क सेवाओं को भी लाभ मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी मामले में हरियाणा के एक आरोपी को गुजरात के राजकोट से गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने बताया कि आरोपी ने खुद को सुरक्षा एजेंसी का अधिकारी बताकर एक वरिष्ठ नागरिक को डिजिटल गिरफ्तारी का डर दिखाया और उनसे 25 लाख रुपए से अधिक की ठगी की। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू होगी। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला गया पहला T20 क्रिकेट मैच बारिश के कारण रद्द हो गया है। इसके साथ ही 5 मैचों की श्रृंखला 0-0 से बराबरी पर है। फुटबॉल विश्व कप में सिएटल में बेल्जियम और सेनेगल के बीच राउंड ऑफ 32 का मैच जारी है। इससे पहले इंग्लैंड ने शानदार वापसी करते हुए राउंड ऑफ 32 में डीआर कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Akhila. The government has approved 2 major highway infrastructure projects worth a combined over 14,000 crore rupees. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decisions yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the Cabinet has approved the construction of an 8.1-kilometre-long 6-lane road tunnel in Delhi on NH-148AE connecting the Dwarka Expressway with Nelson Mandela Mark in Vasant Kunj. Mr. Vaishnaw said the Cabinet also approved the construction of the 117.7-kilometre-long Kanpur-Kabrai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh as a 4-lane access-controlled corridor. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Grameen Viksit Bharat Grangji Act 2025, has come into force across the country yesterday. Under the Act, eligible rural households will now have a statutory entitlement to 125 days of guaranteed wage employment. The government has also notified revised wage rates under the VBG Ramji Act 2025 for all the states.

दोस्तों, समय हुआ है 2:11 और 3 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। मैं हूँ आपके साथ अंजू, और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

देखो चांद ने आज खिड़की से मुस्कुराकर कहा कि खुशकिस्मत हो तुम जो तुम्हें ऐसा हमसफर मिला।

किताबे इश्क के पहले पन्ने पर लिखा पहला नाम हो तुम। किताबे इश्क के पहले पन्ने पर लिखा पहला नाम हो तुम, मेरा पहला, मेरा आखिरी और सबसे मुकम्मल अरमान हो तुम।

तुमसे मिलकर जाना कि मोहब्बत एक महज लफ्ज नहीं है, तुमसे मिलकर जाना कि मोहब्बत महज एक लफ्ज नहीं है, तुम मेरी जिंदगी का पहला सुकून और पहली मोहब्बत हो।

तो अब चलूं मैं, मगर अपना दिल यहीं छोड़ जाती हूँ। तुम्हारी यादों के साये में अपनी हर सांस यहीं छोड़ जाते हैं।

दोस्तों कार्यक्रम का आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और अगला कार्यक्रम हम रहे लेकर आपके साथ आएंगे अर्चित पांडे। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायुची के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। बैठक में दोनों देश द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। जापान की प्रधानमंत्री 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थीं। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा भारत और जापान की विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायुची के साथ आज होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और जापान मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए साथ काम करते रहेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है। ये

0: प्रपोजल है।
1: विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम कल से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतन भोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। भारतीय नौसेना का पोत INS सुदर्शनी सेल फोर्थ 250 न्यूयॉर्क और सेल बोस्टन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क रवाना हो गया है। भारतीय नौसेना ने कहा कि ये यात्रा भारत की समृद्ध समुद्री विरासत तथा विभिन्न देशों के साथ समुद्री सहयोग, मित्रता और सद्भाव को मजबूत करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू होगी। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 3 और नागरिकों के कथित जबरन लापता किए जाने का मामला सामने आया है। मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने पंजगुर और खुजदार जिलों से इन लोगों को हिरासत में लिया, जिसके बाद से इनका कोई अता पता नहीं है। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। फुटबॉल विश्व कप में सिएटल में बेल्जियम और सेनेगल के बीच राउंड ऑफ 32 का मैच जारी है। इस मुकाबले में सेनेगल ने बेल्जियम पर 2-0 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 3:10 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम हमराही। कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

लता मंगेशकर जी की आवाज में जब जब तुम्हें भुलाया। रातों में खूब बातें होती हैं खुद से, रातों में खूब बातें होती हैं खुद से, कौन कहता है कि मैं अकेला हूं। 3:18 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

जलाकर हसरत की राह पर चिराग आरजू के, जलाकर हसरत की राह पर चिराग आरजू के, हम तन्हा रातों में तेरे मिलने का इंतजार करते हैं। 3:25 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

खुद से बातें कर रातों को दिल बहला लेता हूँ, खुद से बातें कर रातों को दिल बहला लेता हूँ, कभी सही होता हूँ कभी खुद को ही गलत ठहरा लेता हूँ। 3:32 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

आ जाते हैं वो भी हर रोज ख्वाबों ख्यालों में, आ जाते हैं वो भी हर रोज ख्वाबों ख्यालों में, जो कहते हैं कि हम तो अब कहीं आते जाते ही नहीं।

बहुत मुश्किल से करता हूँ तेरी यादों का कारोबार, बहुत मुश्किल से करता हूँ तेरी यादों का कारोबार। मुनाफा कम है, मुनाफा कम है, पर गुजारा हो ही जाता है। 3:46 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।

अकेली रात बोलती तो बहुत है, अकेली रात बोलती तो बहुत है, लेकिन सुन सिर्फ वही सकता है जो खुद भी उसके साथ अकेला हो।

3:59 हो चुके हैं, अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमराही। अब से कुछ ही देर में सुनिए हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। बैठक में दोनों देश द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। जापान की प्रधानमंत्री 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थीं। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा भारत और जापान की विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ आज होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और जापान मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए साथ काम करते रहेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी।

0: की भारतीय नौसेना का पोत आईएनएस सुदर्शनी सेल 450 न्यूयॉर्क और सेल बोस्टन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क रवाना हो गया है। भारतीय नौसेना ने कहा कि ये यात्रा भारत की समृद्ध समुद्री विरासत तथा विभिन्न देशों के साथ समुद्री सहयोग, मित्रता और सद्भाव को मजबूत करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अब से कुछ ही देर में पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। फुटबॉल विश्व कप में सिएटल में बेल्जियम और सेनेगल के बीच राउंड ऑफ 32 में दोनों टीमों का मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। राउंड ऑफ 32 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का मुकाबला बोस्निया और हर्जेगोविना से सुबह 5:30 बजे कैलिफोर्निया में होगा। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मेक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। वहीं बिहार, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरल, माहे, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में शनिवार तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The government has approved 2 major highway infrastructure projects worth a combined over 14,000 crore rupees. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decisions yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the Cabinet has approved the construction of an 8.1-kilometre long, 6-lane road tunnel in Delhi on NH-148AE connecting the Dwarka Expressway with Nelson Mandela Marg in Vasant Kunj. Mr. Vaishnaw said the Cabinet also approved the construction of the 117.7-kilometre long Kanpur-Kabrai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh as a 4-lane access-controlled corridor. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Viksit Bharat J. Ramji Act 2025 has come into force across the country yesterday. Under the Act, eligible rural households will now have a statutory entitlement to 125 days of guaranteed wage employment. The government also notified revised wage rates under the VBG Ramji Act 2025 for all the states and union territories. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan described yesterday as an unprecedented day for rural India. Prime Minister Rajitan Sanaitha Khaiji arrived in New Delhi yesterday on a 3-day visit to India. Prime Minister Thakaiji was received by Minister of State Dr. Jitendra Singh. This is the first official visit of Prime Minister Thakaiji to India. She will attend the 16th India-Japan Annual Summit today with Prime Minister Narendra Modi. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between the two leaders. Prime Minister Narendra Modi said he is looking forward to the wide-ranging discussions with Japanese Prime Minister Sunaya Takaishi today that will further deepen India-Japan's special strategic and global partnership. In a social media post, Mr. Modi said he is delighted to host her on her first visit to India. Prime Minister Modi said that through their joint efforts, India and Japan will continue to advance peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. Civil Aviation Ministry announced that India achieved a major milestone with approval of the country's first private point-in-space PIN-S instrument approach procedure for helicopter operations at Undavali Heliport. PIN-S procedures use advanced satellite-based navigation technology to enable helicopters to conduct safe and precise instrument approaches to heliports that do not have a conventional instrument landing infrastructure. The ministry said that PIN-S is particularly beneficial during adverse weather conditions and in areas where

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 4:11 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम अरुणिमा।

जिंदगी सवारने को तो जिंदगी पड़ी है, जिंदगी सवारने को तो जिंदगी पड़ी है, पहले वो लम्हा सवार लो जहां पर ये जिंदगी खड़ी है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम अरुणिमा में, जिसमें मैं एक बार फिर से आपके साथ आपका ही दोस्त अर्चित।

तारीफ करूं क्या उसकी, किसी की सलाह से रास्ते तो जरूर मिलते हैं, किसी की सलाह से रास्ते तो जरूर मिलते हैं, पर मंजिलें तो खुद की मेहनत से ही मिलती हैं। 4:17 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

मंजिल पर पहुंचने के बाद ही पता चला, मंजिल पर पहुंचने के बाद ही पता चला कि मंजिल से ज्यादा अच्छा तो सफर ही था।

हमारा विश्वास पहाड़ को भी खिसका सकता है, हमारा विश्वास पहाड़ को भी खिसका सकता है, लेकिन हमारा संदेह समस्याओं का नया पहाड़ खड़ा कर सकता है। इन लाइनों में पूरी तरह से सच्चाई छिपी हुई है, क्योंकि जब हम किसी काम की शुरुआत विश्वास के साथ करते हैं तो मुश्किल से मुश्किल काम भी हमें आसान लगने लगता है, पर जब हम किसी काम की शुरुआत से पहले ही संदेह करने लगते हैं तो छोटे से छोटा काम भी किसी पहाड़ की तरह बड़ा दिखने लगता है। 4:28 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

जीवन में अगर सुख और शांति चाहते हैं तो दूसरों से हमेशा शिकायतें करने से बेहतर है कि हम खुद को ही बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से लाख गुना बेहतर है खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना। 4:34 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

कौन पूछता है पिंजरे में बंद पक्षियों को, कौन पूछता है पिंजरे में बंद पक्षियों को, याद अक्सर वही आते हैं जो उड़ जाते हैं।

बेहिसाब हसरतें ना पालिए, बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है सबसे पहले उसे संभालिए। 4:49 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।

4:55 हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम अरुणिमा। लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम का आखिरी गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। बैठक में दोनों देश द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। जापान की प्रधानमंत्री 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा भारत और जापान की विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ आज होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और जापान मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए साथ काम करते रहेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। भारतीय नौसेना का पोत INS सुदर्शनी सेल 4250 न्यूयॉर्क और सेल बॉस्टन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क रवाना हो गया है। भारतीय नौसेना ने कहा कि ये यात्रा भारत की समृद्ध समुद्री विरासत तथा विभिन्न देशों के साथ समुद्री सहयोग, मित्रता और सद्भाव को मजबूत करने की प्रतिबद्धता

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 5:11 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम भोर सुहानी। समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है। समय मत लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना फिर समय ही तय करेगा कि अब आपको क्या करना है। 5:11 हो चुके हैं। कार्यक्रम भोर सुहानी में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से मैं ही हूं आपके साथ, आपका दोस्त अर्चित। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम।

एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। जीवन है तो कुछ समस्याएं तो होंगी ही, जीवन है तो कुछ समस्याएं भी होंगी। अगर हम सारा समय सिर्फ समस्याओं के बारे में ही सोचेंगे तो फिर समस्या तो वहाँ की वहीं रहेगी। हमें समस्याओं के बारे में सोचना छोड़कर कुछ समाधान के विषय में सोचना चाहिए।

जीवन में किसी को ढूंढना है तो सिर्फ परवाह करने वालों को ढूंढ लीजिए। जीवन में किसी को ढूंढना है तो सिर्फ परवाह करने वालों को ढूंढ लीजिए। इस्तेमाल करने वाले आपको खुद ब खुद ढूंढ लेंगे। 5:24 हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

सहम सी गई हैं ख्वाहिशें सारी, सहम सी गई हैं ख्वाहिशें सारी, ज़रूरतों ने शायद उनसे ऊंची आवाज़ में बात की होगी। 5:30 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी अर्चित के साथ।